0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: वो ना पाली डाटिया को नियंत्रित

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: Ladies and gentlemen, it's traditional man. Neo Kello.

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो